0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: FM 89.
3: You got me going crazy.
4: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing the song.
5: Trending today.
6: Sony Pictures has dropped a brand new trailer for Spider-Man Brand New Day, which includes a first look at Mark Ruffalo's reprisal of the Hulk. Spider-Man Brand New Day is set to release on July 31st, 2026.
2: City FM 89.
7: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में, और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, इट इज हियर, इट इज नाउ, एंड विद लीडरशिप कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan, supported by OGDC.
10: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
11: शराय तो जवाबित लागू है।
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
1: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शरमीन।

0: TFM 89. This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
3: ek duni do do duni cha sahi intikhab ke inaamat 2500
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
0: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल No Frost, No Worries.
6: City FM 89.
7: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
8: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
10: City FM 89. We're playing your song.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
12: Guess I'm

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
2: We are
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Sony Pictures has dropped a brand new trailer for Spider-Man Brand New Day, which includes a first look at Mark Ruffalo's reprisal of the Hulk. Spider-Man Brand New Day is set to release on July 31st, 2026.
7: FM 89. You got me going crazy.
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
9: Follow us at City FM 89 on TikTok.
10: Jazz Cash के साथ पाओ 1 crore जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया? तो टेंशन कैसी? मौका अभी भी बाकी है. अपने Jazz Cash अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए Jazz Cash है ना?
11: शराय तो जवाबित लागू है.
12: You are listening to City FM 89.
13: We are playing your song.
1: You're listening to
14: non-stop hits.
15: No talk. Just you and the music.
16: Back to back starts now.

0: 89.9
1: जैस कैश के साथ पाओ एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: We're playing your song.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89. We're playing your song.
8: You're listening to
9: Non-Stop

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89. We're playing the song.
5: Trending today.
6: Sony Pictures has dropped a brand new trailer for Spider-Man Brand New Day, which includes a first look at Mark Ruffalo's reprisal of the Hulk. Spider-Man Brand New Day is set to release on July 31st, 2026.
4: City FM 89.
7: You got me going crazy!
8: क्या आप जानते हैं? कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
1: सिटी 89 यू आर लिसनिंग टू
9: नॉन स्टॉप हिट्स
10: नो टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
5: Trending today.
6: Sony Pictures has dropped a brand new trailer for Spider-Man Brand New Day, which includes a first look at Mark Ruffalo's reprisal of the Hulk. Spider-Man Brand New Day is set to release on July 31st, 2026.
7: City FM 89. Ek duni do do duni cha sahi intikhab
8: ke inamat 2500. अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
9: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
10: PediaSure से आईलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
11: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
13: शराय तो जवाबित लागू है।
14: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
15: Deluxe. क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
11: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: सिटी FM 89.
1: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.
17: Welcome back to the Rush Hour. Okay, I'm still getting over the fact that Spain beat Saudi Arabia 4-0. I find that absolutely insane. But we're going to head on to Belgium suffered another disappointment, settling for a draw with Iran. So, I don't know. I've always known Belgium for stroop waffles. I didn't know that they'd be big in football, but I guess they are, or maybe not if they drew with Iran. But Iran has also been playing absolutely insane. Like, I think Iran's been playing well. But also Belgium lost a player early in the second half due to a red card. Egypt would take full advantage later in the day, overcoming an early goal from New Zealand and running away with a 3-1 win to jump to the top of Group G. Guys, I'm going to be very honest with you. I know we do this FIFA roundup every day, and I do want to be giving you guys these updates. But I just find this World Cup so odd. Maybe I've never been so involved in the group stages of a World Cup, but these countries are just like countries I never thought I'd see in the World Cup are there. Like, why wasn't Pakistan there if all these countries are there? You know, we should have been there too. But yeah, I think it's been a bit of a learning curve for me. I hope you enjoy these FIFA World Cup updates. I'm trying to do my best to bring these to you. On that note, I'm going to send you to listen to These Nights by Cannons. And when we come back, I have some fun future feeds recommendations for you to watch on YouTube.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: पूरा हफ्ता राब्ता बरकरार, जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ ₹370 के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ, आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू है।
4: City FM 89, we're playing your song.
5: You're listening to

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
7: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है IELTS on Computer, जहाँ टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री, डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 डेज. आज ही बुक करें अपना IELTS on Computer. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान's मोस्ट ट्रस्टेड IELTS टेस्ट सेंटर. बुक नाउ एट www.aeo.com.pk.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
10: शराइत और ज़वाबित लागू हैं.
0: सिटी एफएम 89 साउंड्स डिफरेंट.
11: यू आर लिसनिंग टू

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89, we're playing the song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
7: ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500
8: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
9: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
10: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू है
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
11: IELTS seems difficult? 4 sections. Limited time, high pressure.
12: Listening, reading, writing, speaking.
11: Not with AEO Pakistan.
12: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
11: Learn strategies that actually work.
12: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
11: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
13: City FM 89, we're playing your song.
14: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.

0: to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी। आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
5: City FM 89.
6: Attention, the standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
9: The Rush Hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
0: Don't adjust your dial.
1: This is
0: City FM 89. You're listening to
1: Future Sounds.
10: Future Sounds.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: We're playing your song.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: City FM 89.
9: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
11: Fight, thrill of the rage. Crushing my opponent, foot up out the break. Cleaning all the plates. Finna make bang. Finna make history. Turn this pain to energy.
12: Relaciones, posiciones.

0: antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
3: City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
1: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.